0: संग्रह बुद्धा थे
1: कर्म बुंचंगे लीला सौड
0: अनमा
1: मगनमा ये जो सो ना ये तो अब इंगिसेरे वही नम मत समेले अतिन कुंगा मगले के मगले कुआं से आए मैं